0: ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सट्रीमिस्ट की, उनका एक उसके मंशूर में ये भी है कि हम एक मुल्क में एक सोसाइटी में फसाद कराने के लिए जो है तोड़फोड़ करें, और उसका इल्ज़ाम जो है जैसे अमेरिका में उसका इल्ज़ाम जो है अफ्रीकन अमेरिकन पे लगाया जाता है या मिनोरिटीज़ पे या मैक्सिकन पे, इसी तरह यहाँ भी गैर मुल्कियों पे लगा के उन पे और नफरत पैदा की जाए।
1: आपने बिल्कुल बया कहा, और उन गैर मुल्कियों में भी ये नए नाजी चाहते हैं कि मुसलमानों को बतौर खास निशाना रखा जाए।
0: एग्जैक्टली
1: और जितना भी इल्जाम, क्योंकि बदकिस्मती से मुसलमानों पर पहले ही बहुत इल्जाम है। और ये भी एक हकीकत है कि कोई एक नौजवान मुसलमान कहीं जज्बा ईमानी से मामूर होकर वो कुछ ऐसी वैसी गलत बात कर देते हैं जी। लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल बुझा कहा, और बीटी ने तो साफ तौर पर लिख दिया है कि ये तशद्दुद और अफरातफरी के जरिए हुकूमतों का तख्ता उठना चाहती है
0: बिल्कुल
1: ये पार्टी, और फिर इख्तदार पर कब्जा करके एक तरह से सफेद मछली रियासत कायम करना चाहते हैं। ये बीटी जो है इसका ये आर्टिकल पढ़ने के लायक है। मुझे खुशी है कि आपने इस पर तवज्जो दिलाई है और इसको आप सामने ला रहे हैं, क्योंकि हमारे आम पाकिस्तानी जो हैं वो शायद इस तरह किताबें इस तरह के अखबार नहीं पढ़ते। तो अखबार बीटी ने अवामी और खुफिया फौज से तलक रखने वाला काफ़ी मवाद जो है वो पेश किया है, जो इस बात यही करता है कि ये तंजीम जैसे नए नाजी जो है ये डेनमार्क में कायम हो चुके हैं
0: जी,
1: और गालबन 1925 के मौसम डेनमार्क से जहाँ ये सरगर्म भी
0: बहुत जी।
1: अब आप बना लगा लीजिए कि सन 2025 से लेकर अब तक क्यों डैनिश इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो इस बारे में खामोश है,
0: और सियासतदान भी खामोश हैं, वज़ीर आज़म भी खामोश हैं, वो भी कोई बात नहीं करते,
1: भी खामोश हैं, जबकि बीजू जो है वो शोहद के साथ इनकी कार्रवाइयों को आयान कर रहा है और इनके मतलबों को तो सामने ला रहा है, और इस पर ये लोग जो है ये बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और जो दाएं बाजू के इंतहा पसंद जो दहशत गर्दी के माहरीन हैं यहाँ दैनिश, उन्होंने जब इन चीज़ों का जायजा लिया है तो उनका ये कहना है कि शायद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दी बेस यानी ये जो नए नाजिम हैं जिनका असल नाम दी बेस है अफ्रीका में, इसके हमदर्द और बाकायदा अरकान जो हैं वो डेनमार्क में मौजूद हैं,
0: वो ऑलरेडी मौजूद है बिल्कुल जी, यहाँ
1: पहले से मौजूद
0: बिल्कुल,
1: तब वो मौजूद हैं तो उनकी निशानदेही क्यों नहीं की जाती। और अगर कोई एक गैर मुल्की तीसरी दुनिया का कोई गैर मुल्की थोड़ा सा सांस भी दे दे और वो ऊपर खुद से पकड़ लिया जाता है कि तुम्हारे सांस से हमें इस तरह की आवाज सुनाई दे रही।
0: जी जी
1: अच्छा, एक और शायद है यहाँ पर रिके पीटर साहब, उनका कहना है कि ये तंजीम पहले किसी न किसी तरह से हुकाम की नजर में है, ये हुकाम यानी डैनिश मुतलका महकमे जो है और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है हमें किसी हद तक इस पर इस्तेमाल भी करना चाहिए और इस पर नजर रखी जा रही है, और लेकिन आम दैनिशाही जो है उन्हें इस बात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं कि ये तंजीम जो है ये डेनमार्क में किसी बड़े दहशतगर्द हमले या इनकलाबी बगावत का सबब बन जाएगी, ये उनका कहना है। लेकिन ये बेस जो है अगर इसको देखा जाए तो सन 2018 में अमरीका में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और जिस वक्त ये कायम हुई थी और इसने अपने मंशूर का ऐलान किया था, अपना मैनिफेस्टो सामने लाई थी, उसी वक्त यूरोपीय यूनियन ने पूरी यूरोपीय यूनियन ने इसे दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। अब ये दहशतगर्द तंजीम जो है जिसे खुद यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द मानती है और उस पर पाबंदी है, समझ नहीं आती बाशी शाम कि इसे खतनाक में क्यों पलटने दिया जा रहा है।
0: अच्छा, ये यहाँ पे ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी एक मिसाल जो है वो दो भाई हैं पलस्तीनियन बैकग्राउंड के समसम, जिन पे मुकदमा किया था कि तुम उन्होंने जाके सीरिया में हिस्सा लिया था उस जंग में, और अभी वो मज़े की बात यह कि वो डेनिश जो है सीक्रेट सर्विस के साथ काम कर रहे थे, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन अब वो मुख्तलिफ अदालतों ने उसको जो है उसकी उनकी सज़ा को जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है ना वो बहस होती जा रही है। और
1: बिल्कुल आप
0: जी जी जी
1: ये शमशम अहमद ये एक बड़ा मारूफ
0: केस हो गया जी जी बिल्कुल,
1: और ये डैनिश डिफेंस फोर्सेज और डैनिश पुलिस इंटेलिजेंस के लिए काम करता है।